0: एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटी की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलबंदर मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों के नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आज यू विचार बिंदु संभाषो विषय दृष्टिकोण।

0: अपने चरित्र शुद्ध बनावे, सदवर्तव रखे, दया उदारता सहानुभूति सहनशीलता तथा नम्रता आना जेवा गुणों अपने विकसावा जोईए। अपना अभिमान रूपी कुपुंडितता मे अपने निकली उषाता अनुभवी जोईए। दृष्टिकोण खूब विस्तृत राखव जोईए। वाणी निरंतर श्रेष्ठ ने मधुर राखवी जोईए। नकामी इच्छाओ अने विचारो नो सदंतर अपने त्याग करवो जोईए। अपना आदर्श सिद्धांत अने विचारो पर दृढ़ता पूर्वक कड़कमापक पड़क उभा रहीए। सराय विश्व नो विरोध थाय पण अपना संकल्पो माथी जरा पण अपने विचलित न थईए। सदाचार अने दिव्य जीवन ना सिद्धांतो ने दृढ़ता पूर्वक वळगी रहीए। गुरु ना उपदेश नो पालन करीए अने तेथी ज अपने परब्रह्म ने प्राप्ति थशे।
1: નરસિંહરાવ દિવેટિયાની રચના સમૂહ સ્વરમાં

સાંભળી હેમંત અગ્રણીના સાથે સ્વરમાં દાસ ધીરોની આ રચના.

0: たるくよ。
1: 하지만 다르카나와 허브리스탄 홀리, 이 역시 문파한테 중앙 상태에서 보이니, 우리 아무 의미 알았지요.

0: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रसाद गांधी वंदना आ कार्यक्रम अंतर्गत सांभशो गांधीजी अक्षरदेह पुस्तक माथी पठन।
1: એસ અંબુ જમ્માલને પત્ર, દિલ્હી, જાન્યુઆરી 11, 1935। ચિરંજીવી અંબુજમ।

आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका निधि झाः। अथ वार्ताः। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहित।

0: प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल एआई संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः सह आर्थर मेंज इत्यनेन सह अपि मिलितवान। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान एआई इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्य अन्तर्गतं 2000-400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मन्त्री डॉ मनसुख मांडवीयः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्य अन्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोऽपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिन्दी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति सम्बोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः, वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिन्द। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तरप्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98.2% मेट्रिक टन मितं मुद्रं 97.7% मेट्रिक टन मितं माश अथ च 18.7% मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये 10वें संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए

में विकास नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार

फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को होने वाले नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलवायु के मुद्दे से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों के नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही एक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आधुनिकता। बुलेट ट्रेन जो वंदे भारत में गतिशीलता की रखा था एक नया भविष्य ने, इन गगनयान का भारत में आत्मविश्वास ने। 4 वर्षीय यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय अने गरीब कल्याण, सेवा अने सुशासन, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन में आत्मविश्वास ने। हमें तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल के प्रयासों की देश में ग्रोथ इंजन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पावर हाउस। विकास में महायज्ञ ने वधु वेगवंत बनाई, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनाई, 4 वर्ष विश्वास न विकास न जन कल्याण।
1: हेलो सामने सुरेश फिर कमर्स पर।

सायंबुद्ध सेवा जैन शीतल वैष्णव यांच्या छे. नमस्कार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं तो कि जो परंपरागत अधिग्रह निष्फल जाए तो नवीनता उकेल पूरा पड़ी सके. फ्रांस पेरिस विवाटेक 2026 समिति ने संबोधता प्रधानमंत्री डिजिटल चुकवणी नाणकीय समावेश शिक्षण आरोग्य संभाल कृषि जेवा क्षेत्रों में भारत में झड़पी टेक्नोलॉजी संचालित परिवर्तन पर प्रकाश पड़ो. मुख्य

comes the point del Canadá, pero hay opiniones mixtas, pero no opiniones mixtas, son más bien headlines a pasar. Atuhini, betul sahaja kecik terkram halu kalungal, cuma atuhini tu real jambu. Ibu she mulai ti prasarit terse, terkram prestiti alwi mana. Sebari pula bagi gujarat sukan sendiri terkram disudha prasarit kerana ushe. Prajik terkram among sebari mabagi prasarit terisu, cuma prajik terse ansi arti. Nara Samina Kampitavala Bhajana Karakaram Sankmane Antargat Sabari Nubhagini Batris Minti Sambhasakashe Sabari Dasvagi Sindhi Karakaram Ami Amgabad Varadara Kintapati Rilikarishan Firmigitunan Karakaram Manoranjan Sabari Sala Dasvagi Jumayashi Digdashitani Nirmata Basu Patacharini Pumititi Par Vashish Firmi Gitu Rajukarvamayoshe लोक संगीत मंत्र क्रम सवेरे 10 बजे में 45 मिनट है। सवेरे 11 बजे पश्चिमा तमाम कार्यक्रमों और अंदावाद फुलत्राय कंधपति रिले करेशन। जिमा बपरे 12 बजे में 2 मिनट है तो सब 2 बजे में 40 मिनट है जो फिल्में गुजराती गीतों प्रसारित करना आवश्यक। बिनुमाटी में कार्यक्रम सैयर बपरे 12 बजे में 30 मिनट है तीमा जी बपरे 1 बजे में 30 मिनट है फर्जी दो समय में कार्यक्रम जय भारती प्रसारित होशे बपरे 3 बजे सभा समापन करना आवश्यक। श्रोता मित्रों अमारी सांजनी सभा प्रारंभ सांजे 5 वगे थे तमाम कार्यक्रमों अमे अमदावाद वडोदरा केन्द्र पाथे रिले करीशुं जेमा सांजे 5 वगे ने 10 मिनिटे भारत सरकार ना श्रम अने रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना हेठळ रोजगार मेळा 2026 प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदीनी उपस्थितिमां आयोजित कार्यक्रमनो जीवंत प्रसारण दिल्ली केन्द्र पाथे करवाने आवश्यक। संजय छबड़ी ने 25 मिनट भूष केंद्र में सैनिक समाचार पेश। युवा मित्र मित्रों का एक रूम युवावानी संजय सहज छबड़ी। संजय सात दिन भूष मिनट ग्रामीण समाज मित्रों का एक रूम घर में चलो। रात्रि नवाबी ने 15 मिनट कार्यक्रम अंबावाद वडोदरा केन्द्र पाथे रिले करवाने आवश्यक। रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई में कार्यक्रम रिले थशे। रात्रि 11 बजे 10 मिनट समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण विशेष श्रृंखला आप सांभी सकशो। रात्रि 11 बजे 45 मिनट सभा समापन करवाने आवश्यक। तो मित्रों आप सांभी रहे थे आकाशवाणी भूज के मिला आज दिवस दरमियान प्रसारित थनारा कार्यक्रमनी फिकतो अने हवे जोईए स्थानिक हवामान। आज सवेरे 6:30 पूरा थता 24 कलाक दरमियान भूज खाते महत्तम उष्णतामान 37.2 डिग्री सेल्सियस तेमज न्यूनतम उष्णतामान 28 डिग्री सेल्सियस नोंधायो हतो। हवामान खाता तरफथी हवामान माटेनी खास कोई चेतवणी आपवामां आवी नथी। मित्रों आप सांभळी रह्या हता आकाशवाणी भूज केन्द्रमां आजे प्रसारित थनारा कार्यक्रमोनी विगतो तेमज हवामानी जानकारी। आकाशवाणी भूज हवे बराबर 8 वगे समाचार प्रभाग त्यारबाद सवा 8 वगे मॉर्निंग न्यूज अने दिल्ली केन्द्र पाथे रिले करीशुं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: भारत का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास दिखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
2: परसों पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। आकाशवाणी समाचार पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: छह मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुँचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: dictar militar y dice que ha derecho a la libertad.
1: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,58,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 48,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के नारायणपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नारायणपुर

0: के लिए का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और खास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए नारायणपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंत में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
0: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नई ग्रीनफील्ड

रिपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतू सरकारी कॉलेज के

0: आज से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम विमान योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से

0: अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के आठों राज्य जिन्हें अष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णी सकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित अध्ययन आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में रग्बी को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद फरहत। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमरीका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। दैनिक जागरण की खबर है वही नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्य गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में रग्बी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार विभाग का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oilseeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
5: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talaash mein hai jin par lambe samay tak

संबंधितपर चर्चा में थे, विशेष अनुभव मिली। दक्षिण और मध्य गुजरात तथा सौराष्ट्र में अस्थि सामान्य वर्षा आ गई। हमें दक्षिण मुख्य समाचार 9:30 बजे पहुंचे।

सिर्फ मुझे जो बरसात के आवकार दो गीत पास होया से कुदावी भेर कुदी जाजी स्वर में अने हे जामू खेंदा रजा अने मौज करदा रजा कि आओ आंजी रे जो दोस्त आवटा थे रजा गंजी से फिर मिलबो कैसो दी मणि के जजा करेंगे।

0: स्टार्टअप सिटीज थी दुनिया में चमकती आधुनिकता। बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत की गतिशीलता थी निकलता एक नवा भविष्य ने गगनयान का भारत ना आत्मविश्वास ने 4 वर्ष की आ यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय अने गरीब कल्याण सेवा अने सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान अने आयुष्मान कलश थी मजबूत करना जन जन ना आत्मविश्वास ने अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देश नु ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्य नी आधुनिक टेक्नोलॉजी नु पावर हाउस। आओ आ विकास ना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए 12 वर्ष विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना।
1: पंकज तू बच्चों खेलवा जाए तो आ नंबर ध्यान की रोकी 1793
2: आ नंबर कौन है पप्पा?
1: आ नंबर से कोस्टल हेल्पलाइन नो नदिया में अदानी बोट सीजन नंबर माछी मारी घर कहने सर बांधकाम और शंकास्पद व्यक्ति ने बोट गोलीबारो स्मगलर के अन्य कोई हिलचाल देखा है तो तुरंत कॉल 1093 डायल करे। आ नंबर 24 कलाक चालू हो तो गमे तो आ नंबर पर थी मरीन पुलिस की मदद मिल सके समझे बेटा। आपने सजागता अभी तक खिलाड़ी आवेदन लाई सुरक्षा की राष्ट्र सुरक्षा की खातिर गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: Pessoal, a opção virada é o demônio.
1: पंकज तू दरियो खिड़वा जायछे और नंबर ध्यान दी गोखली 1093 आ नंबर को ना छे पप्पा आ नंबर छे कोस्टल हेल्पलाइन नो दरियो में अदानी बोट सीजन लेवल माछी नदी घर के अंदर बांधता मैंने शंकास्पद व्यक्ति ने बोट गुनेगारो स्मगलर के अन्य कोई हिलचाल देखा है तो तुरंत आज 1093 पे डायल करे आ नंबर 24 कलाक चालू होय छे तो कने तारा नंबर पर थी मरीन पुलिस की मदद मेल सके छे समझो बेटा आपने सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा की राष्ट्र सुरक्षा की खातिर गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित छना 12 वर्ष की यह विकास का संकल्प कभी अपक्ष नहीं पुरुषार्थ की गाथाओं क्यारे फूटती नहीं ये यात्रा छह छना 12 वर्ष के विकास में समर्पित यशस्वी वहा प्रधान श्री नरेंद्र भाई

ट्रेन निबंध भारत में गतिशीलता की लिखा का एक नया भविष्य ने भव्य नाम का भारत में आत्मविश्वास ने चार वर्ष की यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय गरीब कल्याण सेवा सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान आयुष्मान कवच की मजबूत तथा जन जन में आत्मविश्वास ने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल प्रयासों की देश न ग्रोथ एंजीन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी पावर हाउस विकास में महायज्ञ ने मधु वेगवंतो बना दिए विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बना दिए बार वर्ष विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चाहते कार्यक्रम अमन। मैं हूँ विनेश, नमस्कार।
1: अजीत करते नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमने भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पेकारिया जी ने। लिखते हैं,
0: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, न कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कवर करेगी। भीड़ में एड़ी उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
1: आपके सुंदर विचार के बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भीतीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू का। लिखा है, नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
0: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को

0: विचार करना चाहिए। इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उनकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: आगे लिखा है कारगिल के वीर योद्धाओं के

0: से रामचंद्र गुप्ता पांडे राम राजवाड़े देखते हैं।
1: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहे और भाईचारा बनाए रखे तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
0: जी
1: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बोर्ड हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: ग्राम तिसाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुनेश नगनपुरे, राधेश्याम नगनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, बोलू, कुसुमाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार भाग से जी लिखते हैं। प्रिय अजीत जी और गणेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
0: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी तेल हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक है। धन्यवाद,
1: स्वागत है आप सबका। श्रोताओं एक बार फिर से ये भी यानी श्रृंखला की अगली कड़ी में।
0: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकपर्क मान सरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। प्रोजेक्ट जी आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: मनीष जी देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर के डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
0: बिल्कुल,
1: तो आगे बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का डेल्टा या जबल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहाँ तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोता आप बात करते हैं इसके नाम पर, नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के डल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को डल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओ डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। यह झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारों पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र है संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारी पर समा बांध देता है। श्रोताओ एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप है। इन्हें फ्लोटिंग आइलैंड या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नाव द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप है वे मानव निर्मित है। ये झील के खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नाव पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। बाजार श्रोताओ इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी है। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओ ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बने कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय

0: रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। स्वतः डल झील का पानी मीठा है। यहाँ के प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब यह झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओ, बात यही पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि यह झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुने आज का प्रश्न। आज की जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। हाँ,
1: हमारे एड्रेस का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-4400-559। आप हमें यानी CITNCIT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की

0: हम कभी मिलते रहेगी और सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिबर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट पर लिखित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है
0: कोई चीज मेरी प्यारे का मैं

उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ा ले। जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लड़ते पड़ते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाई आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने छह व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। आज को तो मैंने अपना कोट की जेब में रख लिया। आते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। वैश्य ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अपना ही पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देनी चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। छह विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने अंग्रेजों की भाषा सीखी। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। तब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में सड़क में चली खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश बेफुसकों के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी देश तैयार कर लिया है। वो लिलपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई।

कुछ गुस्से में और कांटे लेकर वो बेफसलों की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कहीं न थी। मैंने खाड़ी में घुस गया, वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया। बेफसकों के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे। चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी न बिगाड़ सके। बेफसकों के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहीं के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जाने लगा। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव ही मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत से भोजन से लगी मेरे नाव पर लगवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना

Μόλι που έχει τη γυναίκα, μπορεί να γίνει ότι είναι χαρπαδιά. Πώς και πάλι, όχι πέρ τζαχάστα τα ημίδια. Πώς ήταν πάλι, σημαίνει τζαχάστα χαρπαστάν και μπήρα με λίγο. Το φρίκο είναι ότι βρίσκεται πιστήμη και να λέει चलते चलते हमारे जहाज तूफान में फंस गए, रास्ता भूल गए। भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए, पर नाव अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला, पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर ले जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक मशाल का आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटने तक ले रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा चुका। कहने को तो ये जौ का खेत था, और जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे में थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समझा करते थे। जौ के पौधों की आग में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटना शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा।

porque uma tirinha que tá realizada. O cilindro de Charlie Pisani. Onde um pano de carro de Hachokia. Também de primeira e tirreira. E de que? Os nomes de Dinesi. Zamin Bakhtia. Meri jaan mein jaan aayi. Maine chilla chilla kar usse apne baare mein batana chaha. Par woh samjhi tab nahi. Usne mujhe badi saavdhani se uthakar apni chori hatheli bana kiya. Apne ghar mein aaya. Ghar aakar jaise hi kisan ne apni patni ko dikhane ke liye हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देख कर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। वहाँ सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थी। नाग जैसे पाले, बड़े बड़े थानों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटे बच्चे भी मुझसे चार गुना लंबा चौड़ा। मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। मेरे पट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय लग गया। इनका आकार ही दुर्लभ था, ऐसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीखी, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। नाच और तलवार चलाना मुझे बहुत पसंद आता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। तब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरे खेल

तो वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहाँ मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने लगे। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आई।

0: यहाँ पर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचले नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गई। पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा। इससे तो मैं नहाने के काबिल नहीं ठीक था, मैं सोच रहा था। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा से तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम के एक बच्चे के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: मुझे बुखार हुआ है।

them, and talk about his family.

0: कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
1: परेशान मत हो, मैं हूँ ना।

0: छठ अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: सुने थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना। और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा ओन प्रसारण यहाँ पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विनेश को मन कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: आपको समय रहता प्रायोजित कार्यक्रम उमंग जिन्हें प्रायोजित होता है एनसीईआरटी प्रसारण आकाशवाणी में भोज केंद्र को ठीक करवाने आ गया।

स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चमकती आधुनिकता। बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत ने गतिशीलता की रखाता एक नवा भविष्य ने नाम का भारत में आत्मविश्वास ने 4 वर्ष की यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय गरीब कल्याण सेवा अने सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत तथा जन जन में आत्मविश्वास ने अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देश नु ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रहु छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्य नी आधुनिक टेक्नोलॉजी नु पावर हाउस। आवो आ विकास ना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए 12 वर्ष विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना।

सदपसार लोकन के ब्रह्म जीव ब्रह्म।

हरे गुरु संत थी छेतो भरे संगत करे हरि गुरु संत की।

खामा संत बतावे तो काम है।

ಅವರ ಜೊತೆಯಾರು ಭೈ ಭಾವಿತಾರಿ

बुझ चली।

पर शुरुआत करूं था भगत जी इसमें सा अचो भगत सुंदर ए साथिन खां बधो भगत जोसन जेमे अजम बधना लोक कहानी सुहिनी में है रचना है हेमंत जी।

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: साजी जी, सुरहाल जी, कई मुझे दवा के पहले ही बुधा चुका हूँ।
1: 21 जून ते आलमी योग दिन करे मल्हायो वेंदो आहे। इन निमित्त
0: योग असां पंहिंजे जीवन में कीअं उनखे शामिल करे सिहतमंद जीवन जी सघूं था, ऐं उन सां जुड़ियल कुझु सवाल इन्हनि सभिनी सवालनि जे जवाब लाइ अॼु असां असांजे स्टूडियो में नींड ॾिनी आहे योगाचार्य श्रीमती विद्या बजाज जिन खे। नमस्ते विद्या जी।
2: नमस्ते सुनीता जी,
0: स्वागत आहे असांजे सुहाण कार्यक्रम में।
2: तव्हांजी निवाणी नींड 12 बजे अहिड़ी सुठी नींड जे लाइ मां तव्हांजी शुक्रगुज़ार आहियां।
0: विद्या जी, सभ खां पहिरीं योग त सभिनी खे ख़बर आहे त छा आहे, पर हिकु योगाचार्य तरफ़ा योग जी वस्प या योग छा आहे ऐं उहो कहिड़ी उमिरि खां शुरू करणु घुर्जे जीअं असां सिहतमंद जीवन जी सघूं।
2: सुनीता जी, योग जो मतिलबु आहे जुड़ाव। योग जो ॾाढा माण्हू आसन ऐं प्राणायाम ताईं सीमित सम्झनि था इन जो अर्थ, पर इन जो मतिलबु आहे जुड़ाव। कुझु साल पहिरां जॾहिं 1910 आयो हुयो, उन समय पहिरां टेलीविजन में असां ॾिठोसीं पहिरां सभिनि खां पहिरां कनेक्ट करण जे लाइ हिकु एल्युमिनियम जी एंटीना हूंदी हुई जेका असां पंहिंजी टेरिस ते लॻाईंदा हुआसीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: उन एंटीना सां असां जेके वेव्स मोकिलियूं वेंदियूं हुयूं उहे कैच करे उहे प्रोग्राम्स ॾिसी सघंदा हुआसीं। सेम ई असांजो शरीर बि हिकु एंटीना वांगुरु कमु कंदो आहे, जंहिंसां असां पंहिंजे मन खे ब्रह्मांड सां जोड़े था सघूं। इन जुड़ाव जो नालो ई योग आहे। इहो ॿुधी करे घणा माण्हू इहो चवंदा आहिनि पोइ इन जो मतिलबु आसन ऐं प्राणायाम योग कान्हे। न, आसन ऐं प्राणायाम बि योग ई आहे, लेकिन इहे योग सां पंहिंजे शरीर खे जाते असां जोड़णु चाहियूं उन जुड़ाव जो माध्यम आहे आसन, प्राणायाम, नियम, यम, आहार, प्रत्याहार, इहे सभु माध्यम आहिनि। माण्हू चवंदा आहिनि कहिड़ी उमिरि खां योग कयो वञे। जीअं नंढो ॿार पैदा थींदो आहे उनखे असां सेखारींदा न आहियूं कि कीअं हथ ऐं पेर हिलाए।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन ॿार जीअं ॿाहिरि निकिरंदो आहे हथ ऐं पेर हिलाइण लॻंदो
0: आहे,
2: रोअण लॻंदो आहे। त इहे सभु किथो सिखियो? कुदरत हिकु अहिड़ी शइ आहे जेके जेके जेके शरीर इंसान लाइ ज़रूरी आहिनि उमिरि सां पाण ई सेखारींदो थो रहे। जॾहिं कुदरत हुननि खे एतिरी हलचल पहिरियों ई सेखारे मोकिलियो आहे, उनखे अॻिते वधाइण जे लाइ उनखे सिस्टमेटिक उनखे हलचल कराइण जे लाइ

0: असां जेका हुन खे सेखारींदा आहियूं, शिक्षा ॾींदा आहियूं, उहा ई आसन आहिनि। कीअं ॿुधिजे, कीअं सम्झे, सभु असां जेको हुननि खे सेखारियूं था सभु आसन आहिनि, सभु योग
1: आहे।
0: जीअं जीअं असां वॾा थियूं था, असांखे उन खां वधीक शिक्षा जी ज़रूरत पए थी। असां पंहिंजे शरीर खे कीअं साधियूं, असां पंहिंजे मन खे, आत्मा खे, चेतना खे कीअं जागृत कयूं। जिते बि असां जुड़ण चाहियूं उते जुड़ी था सघूं। हिकु सामान्य सो उदाहरण आहे, जॾहिं कोई ॿार हूंदो आहे, अगरि उहो मन लॻाए नथो पढ़े, उन्हनि जो मन बेकाठे आहे, अगरि उन केतिरा ॿिए घंटा वेठा हुजे, लेकिन हुनखे उहो यादि न थींदो आहे, उनजो जुड़ाव न आहे हुन सां। बसि इहो जुड़ाव ई सिखण जे लाइ असांखे प्राणायाम करणो पवंदो आहे, असांखे ध्यानु करणो पवंदो आहे, जीअं असांजो मन लॻण लॻे कंहिं बि शइ में। इन जे लाइ कंसंट्रेट करे सघूं, इन जे लाइ जंहिंसां असांजो मन हर शइ सां जुड़ण लॻे जंहिंखे असां चाहियूं। कुझु माण्हू जुड़ण चाहींदा आहिनि संसारी शयुनि सां, कुझु स्पिरिचुअली ॾाढा जागृत हूंदा आहिनि, जेके मोक्ष प्राप्ति जे लाइ अॻिते वधणु चाहींदा आहिनि, त उहो ओतिरो वधीक अॻिते थी वेंदा आहिनि। पर स्टार्टिंग हितां ई आहे, आसन आसन।
1: बराबरि, योग मतिलब हिकु यात्रा आहे,
0: यात्रा आहे
1: जी। असां नंढे हूंदे खां ई पंहिंजे बुज़ुर्गनि खां या असांजे घर में जेके वॾा हूंदा हुआ, उन्हनि जी वाता ईअं ई ॿुधंदा हुआसीं की भई असांखे पंहिंजी हलंदी आहे हलाए, ठीकु आहे। त जेको हिन साल जो इंटरनेशनल योग डे जो जेको थीम आहे, उहो बि ॾींहुं आहे हेल्दी एजिंग। त उहा बि ईअं चाहींदा त असां कंहिं ते बि आधारित न हुजूं, असां हलचल करे सघूं, पंहिंजो कमु पाण करे सघूं, ऐं जीअं उमिरि वधे थी तीअं के के बीमारियूं उन्हनि खे थी वञनि थियूं। त अहिड़ियूं कोई सूक्ष्म क्रियाऊं या प्राणायाम आहिनि जेके हू सवलाई सां करे सघनि, हिकु आम इंसान चवां, ऐं उन जा फ़ाइदा बि उन्हनि खे मिलनि।
0: ॾाढो सुठो सुनीता जी सवाल आहे तव्हांजो। प्राणायाम बस प्राणन जो आयाम, पूरो जो पूरो ध्यानु सांसनि ते ॾियणु।
1: बिल्कुल,
0: सांस केतिरी देर में वठणी आहे, उनखे रोकणो आहे, वरी छॾणो आहे, इन्हनि टिनि क्रियाउनि सां प्राणायाम ठहियल हूंदा आहिनि। हिकिड़ा सवला प्राणायाम चाहे त इंसान जेके ऋषि मुनि आहिनि उहे ॾाढा ॾाढो टाइम ताईं पंहिंजी सांस रोके रखंदा हुया, पर आम इंसान जे लाइ इहो संभव कान्हे। त आम इंसान कहिड़ा कहिड़ा प्राणायाम सवलाई सां करे सघे थो, उहो तव्हां सभिनि खां पहिरियां करण खे असांखे ओंकार ध्वनि, उन खां पोइ असां ओंकार जी ध्वनि करण खां पोइ असां कंदासीं भस्त्रिका, इन खां पोइ हाणे असां कंदासीं नाड़ी संचालन, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं अनुलोम विलोम, इन खां पोइ असां प्राणायाम ते पहुचंदासीं त्रिबंध, त्रिबंध इन खां पोइ कंदासीं असां भ्रामरी। लास्ट प्राणायाम हाणे आहे जेको तव्हांखे रोज करणु खपे, कपाल भाति।
1: के अहिड़ा सवला या जंहिंखे चइजे आसान योग, जेके असांखे आसन करणु खपनि, जंहिंसां असां जेका असांजी एजिंग थिए थी उनजी रफ़्तार खे घटाए सघूं।
0: ॾिसो सुनीता जी, योग जा ॾाढा प्रकार आहिनि, जीअं हठ योग आहे, पावर योग आहे, सहज योग आहे, मनुष्या योग आहे, पर हिन में जेके नंढे ॿार जेके नंढी अवस्था खां शुरू करनि था, उहे त हठ योग बि करे सघनि था, विनस्या करे सघनि था। विनस्या जो मतिलबु छा थींदो आहे, फ्लो, जेको फ्लो में योग कयो वेंदो आहे, स्ट्रेचिंग कई वेंदी आहे, उनखे चवंदो आहे विनस्या योग। लेकिन जेके वॾे उमिरि खां जंहिंखे सुजाॻी आई आहे, उहे नथा करे सघनि, त उन्हनि जे लाइ सहयोग आहे। त हाणे मां तव्हांखे कुझु कुझु आसन अहिड़ा ॿुधाईंदमि जेके हर एज जा माण्हू करे थो सघे, ऐं जेके असांजे लाइ ॾाढा सुठा आहिनि। सभिनि खां असां शुरू कंदासीं ताड़ासन खां। ताड़ासन करण सां असांजो शरीर पूरो जो पूरो शरीर स्ट्रेच थी वेंदो आहे, असांजे शरीर जूं तमामु नसां उन्हनि में रत जो संचार वधीक थी वेंदो आहे। इन खां पोइ हलासन करे सघूं था। हलासन असांजे मेरुदंड खे लचीलो रखंदो आहे। सर्वांग आसन आहे, शीर्षासन आहे, पर जेके माण्हू शीर्षासन नथा करे सघनि त उन्हनि खे सर्वांगासन कराईंदा आहियूं। सर्वांगासन जा बि फ़ाइदा ओतिरा ई आहिनि जेतिरा शीर्षासन जा फ़ाइदा आहिनि, ऐं सर्वांगासन सां असांजो रक्त जो

0: असांजे हृदय में वञे थो ब्लड खे प्योर करण जो कमु केरु कंदो आहे हृदय कंदो आहे असांजो ऐं मस्तिष्क में वञण सां असांजी यादाश वधंदी आहे असांजे मस्तिष्क जी एज वधंदी न आहे त हिनजे करे काफ़ी सारा अहिड़ा आसन आहिनि जेके तव्हां करे था सघो हल्का फुल्का जीअं तव्हां करे था सघो पंहिंजे नीह खे पंहिंजे पेट में लॻाए करे ॿिन्हिनि घुटननि खे खीचे करे पंहिंजे पाचन शक्ति खे मजबूत था करे सघो इन ई टाइप जा कई सारा आसन आहिनि हल्का फुल्का जेके सभु करे था सघनि
1: विद्या जी मन न घुरियो आहे घड़ियाल जा कांटा असांखे इशारा करे रहिया आहिनि छाकाणि त वक़्त जी महदूदगी आहे बाक़ी तव्हां वटां असांखे ॼाणण लाइ त ॾाढो कुझु आहे जेको तव्हां ॿुधाए सघो था ऐं असांजा ॿुधंदड़ उन मां फ़ाइदो बि हासिल करे सघंदा पर जीअं त वक़्तु महदूद आहे त अॼु असांखे असांजो ही कार्यक्रम हिते ई पूरो करणो पवंदो पर तव्हां असांजे ॿुधंदड़नि खे हेॾी सुठी ॼाण योगा जे बारे में ऐं कीअं हेल्दी एजिंग कजे उन जे बारे में जेके बि जीवन शैली में तब्दीलियूं आणियूं आहिनि उन जे बारे में विस्तार सां ॿुधायो उन लाइ असीं तव्हांजा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं
0: मूंखे ॿुधण जे लाइ श्रोताऊं मुंहिंजी तरफ़ां लख लख धन्यवाद सुनीता जी तव्हांजी बि मां शुक्रगुज़ार
2: आलमी योग ॾींहुं निमित्त अॼु ॿुधी रहिया हुआ मुलाक़ात योगाचार्य श्रीमती विद्या बजाज सां दोस्तो अॼु सुरहाण कार्यक्रम में बसि एतिरो ई तव्हां खां इजाज़त चाहियूं था नमस्ते।

0: आत्म पर बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में गतिशीलता की रेखा का एक नया भविष्य है। इनके नाम पर भारत में आत्मविश्वास है। 4 वर्ष की यात्रा से गुजरात में अंत्योदय और गरीब कल्याण सेवा और सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान और आयुष्मान कलश की मजबूत तथा जन जन में आत्मविश्वास ने नेहरू को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने प्रयासों की देश में ग्रोथ इंजन गुजरात बनी रहू है। ग्रीन एनर्जी और भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पावर हाउस विकास में महायज्ञ ने मधु वेगन को बना दिया। विकसित भारत माके विकसित गुजरात बना दिए। 4 वर्ष विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना
1: दरियो खेलवा जाए तो आ नंबर ध्यान दी रोखे 1093
2: आ नंबर कौन से पप्पा
1: आ नंबर से कोस्टल हेल्पलाइन बढ़िया ना अजान बोट सीजन नंबर माशी मारी घर कहने से बनते मुझे शंकास्पद व्यक्ति ने बोट मुझे डालो स्मगलर के अन्य कोई हिलचाल देखा है तो तुरंत आज 1093 कॉल करे। आ नंबर 24 कलाक चालू हो तो गमे का आ नंबर पर फिर वरुण पुलिस की मदद मिल सके से समझे बेटा आपने सजागता अभी तक डाली आगे दरियाई सुरक्षा की राष्ट्र सुरक्षा की खातिर गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भारत में बुलेट ट्रेन निर्बंध भारत में गतिशीलता की रखा का एक नया भविष्य में गगनयान का भारत में आत्मविश्वास में चार वर्ष की यह यात्रा है गुजरात में अंत्योदय गरीब कल्याण सेवा सुशासन पीएम आवास हर घर किसान सम्मान आयुष्मान परस की मजबूत तथा जन जन में आत्मविश्वास ने हमें तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने प्रयासों की देश में ग्रोथ इंजन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी और भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पावर हाउस गुजरात बनाए बार वर्ष विश्वास न विकास न जन कल्याण
1: मनोरंजन कार्यक्रम समाप्त करिए आज कार्यक्रम में दिग्दर्शक और निर्माता बासु भट्टाचार्य पुण्यतिथि पर गीतों आप आकाशवाणी लोक संगीत कार्यक्रम में आज सांभळी लोकवार्ता अलुभा जीवराज चारण कंठे कच्छी लोकवार्ता पहला आ संदेश सांभळीए
2: शंकास्पद व्यक्ति ने बोट गुनेगारों स्मगलर के अंदर कोई हिलचाल देखा है तो तुरंत 109 कॉल करें आ नंबर 24 कलाक चालू है तो गमे तरह नंबर पर मरीन पुलिस की मदद मिली सके समझे बेटा अपने सजागता अनेक खिलाड़ी आगे दरियाई सुरक्षा की राष्ट्र सुरक्षा की खातरी गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

Thank you.

0: ponieważ będę tego mówił.
1: Thank you.

जो मैं करवा दिए हुए जिसको कठिन चाहिए वो जी तीन फुट बोले वो साहन प्रसाह जी ने की मदद इस समय जो सारे कोई जमीन रुका रुका खाई के ठंडा पानी की नीत पुरानी चौकी मत मिल पानी की मदद के कभी धन कमान में बर्तन मुख्य लोग वेदन के बस परमात्मा जी मन देंगे व्यस्त रहे इन धन कमान में क्या था अकबर ने किया काम भारत में पोषक मारो परमात्मा को जबरदस्त बंदो परमात्मा के मणिदल इधर बकरी बत्ती चलना सकते बकरी बत्ती लक्ष्य दान करे थे हम अपने एक लोग काम के लिए पूछे हैं कि जो बधाई दान दी तो कृपा वो बधाई नहीं तो परी तुमने काम को काम खाना मिले तो आम धाम के भी भेज में आगे तुम्हें आपका माध्यम है यार जीने वाले और है जो बेटा जी रहे लोक भरम हम पर कह रहे आपने लेकर नियम नहीं वाला और है जो दिल दिया था जो कोई राज भी नहीं हुआ है जो कोई माता के पेट में देखो जन्म कर रहा तो बाहर तैयार किए तो कि परमात्मा की दरार गुजर रही है दुनिया मूर्ख है वह जो मैंने कहा खान खाना नहीं कहीं और उनका शर्म जो हमें कह रहा है तो इन खाना खान खाना रोज अकबर जब कोई मिट्टी कर दिया अकबर तबाह ना निकले अंग्रेज खान खाना चोलों में बर्तन उठते थे वज बाजों में उनके घर के वाले बर्तन उठते थे अरे खान खाना के वहां चक्रवर्ती मारू इंसानियत की ताक में तेरे से लग मारू के दूसरी अकबर ने मोह में दूर निकलो कि जाते सुर सब बार है सौकत दौकत बार यदि मुझे तो संपूर्ण बार भूमि में बार है एक बार उठा देने का बर्तन उठे तो भगत खान खाना जवाब देने अपने बोलो कि जाते सुर सब बार है सौकत दौकत बार

0: जो दुश्मन पा देते हैं जो हृदय ठान ले कान के खान खाना जो पक्ष को है।
1: आप लोक वार्ता सांभ रहा था पहला चार पास लोक संगीत ना कार्यक्रम आकाशवाणी भूज हम 11 हमारा हर पची कार्यक्रम अमदावाद वडोदरा के नंबर थी रिले कर आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा प्रस्तुत मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में छेल्ला 2 वर्ष में भारत की विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम और राष्ट्र प्रथम मंत्री साथ दुनिया में एक नवी ओळख बनावी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 21 जून सुधी केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में मुलाकाते लेह खाते आंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उजाणी में भाग लेशे। कतार से एलएनजी भरेलू एलएनजी से दिशा जहाज भरूच दहेज बंदर आगे पहुंचू। युद्ध समाप्त बाद होर्मुज पार करना प्रथम एलएनजी जहाज भारत आयु। केन्द्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारमण आज मेघालय में पूर्वोत्तर में सौथी मोटा जैविक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करते। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार में एक दिवस की मुलाकात पटना और छापा में विविध कार्यक्रमों में भाग लेते। गुप्त माहिती ने आधार सुरक्षा दल मणिपुर में व्यापक शोधखोल कामगिरी चलाई रहा है। आ दरमियान विविध पूर्वाग्रह संगठनों 2 सक्रिय सभ्यों की धरपकड़ और एक अपहरण करायेल व्यक्ति ने सफलतापूर्वक बचावाई। भारतीय सेना ने शीख रेजिमेंटे अग्निवीरों ने सशक्त बनाने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब साथ करार पर हस्ताक्षर कर देशभर में खासकर ग्रामीण और ओछा विकसित विस्तारों में सरकारी खरीदी की तक विस्तार करने सरकारी ई मार्केट प्लेस गई काले ई गवर्नमेंट सर्विसेस इंडिया लिमिटेड साथ एक करार पर हस्ताक्षर कर। दिल्ली बड़ी अदालते सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलिग्राम द्वारा दाखिल करी अरजी पर निर्णय अनामत राख्य। नवसारी खेड़ में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले एक प्राथमिक शाला में आयोजित रात्रि सभा में ग्रामजनों साथ संवाद कर। गांधीनगर में केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव गुजरात की मुलाकाते तेथापुर तालाब खाते वृक्षारोपण कर। हवामान विभागे आज असम मेघालय पश्चिम बंगाल हिमालय तलेटी और सिक्किम में केटलाक स्थलों भारे वरसाद की आगाही की। आता अत्यार मुख्य समाचार हम पी 12 मुख्य समाचार सांभी सकशो।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में

0: चुके था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
0: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मारा वाला सागर खेड़ू भाइयों, दरिया खेड़वा जाओ, ये पहला हवामान विभाग ने आया ही और दरियानी स्थिति में हमेशा ध्यान रखो। फिशरीज विभाग द्वारा हवामान खराब होवानी चेतावनी हो तो दरिया जवानों टाड़ो, अने जो दरिया में हो तो तुरंत ज पाछा आवी जाओ। आ चेतावनी की अवहेलना किस्सा में बोट डूबवाना बनाव नोधायेल छे, अने कोई संदिग्ध व्यक्ति के बोट माछीमारी करतुं देखाय तो तुरंत ज 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जाण करो। हवामान ने समझी बनो सुरक्षित खेवाया, आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा की खातरी। गुजरात

0: अजीत सिंह चिन्मय श्रीपद शर्मा टू स्टेट्स फिल्म गीत अब सामने रहता
1: है। दोस्तों जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अरे भाई क्या सांभू, आपने दरिया में होइए तो आ इंटरसेप्टर बोट अपनी अने देश की रक्षा करे छे।
4: गुजरात राज्य ना दरिया किनारे कुल 27 इंटरसेप्टर बोट अपनी सुरक्षा माटे दरिया में सतत पेट्रोलिंग करे छे, अने आपनी पण तपास दरमियान जरूरी दस्तावेजो अने साची माहिती आपी तेमने संपूर्ण सहकार करवो जोईए। आपने दरिया में के किनारे अजाणी बोट, व्यक्ति के शंकास्पद हिलचाल देखाय तो तरत ज 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस की जाण करवी जोईए। अपनी सजगता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा की खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

राज शर्मा दिलवाला फिल्मों गीत आप सामने रहता है। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त है। प्रसारण आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर कर प्रस्तुत लोक संगीत नो कार्यक्रम आरंभ संभो प्राचीन भजन विजय चंद्र जाधव स्वर में रचना है नरसिंह मेहता ने।

राजेंद्र जाधव ने स्वरमा मेहरबानी रचना आप सांभळी रहता है कार्यक्रम में आप सांभळीए दीपक कुमार दंतानी ने स्वरमा लोकगीतों।

मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अशुभ भावना भावता भावता आजना दिवस माटे आपो अनुमति आपने बन्ने रेडियो संगमियो अल्पेशा अने लिपि प्रियजनो आजनो कार्यक्रम आपने केवो लाग्यो साथे ज आपना दैनिक जीवन में योग नो शु स्थान छे ए पर अमने चोक्कसथी जणावजो आ सरनामे नियामकश्री सहायक कार्यक्रम विभाग आकाशवाणी केन्द्र आश्रम रोड नवरंगपुरा अहमदाबाद 4800009 आप अमने ईमेल पण करी शको छो ईमेल आईडी छे abadsahyar@gmail.com आप सुनी रहे हैं महिलाओं माटेनो विशेष कार्यक्रम सहियर प्रस्तुत करता हता हितेश मानाणी मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की हम कहें विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की हम कहें विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन लगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है फ्रांस में करवा भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे
2: आज का भारत विश्व का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों में दिशा तय करेगा
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63,000 से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के चंदवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकेडाटू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकेडाटू परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच करेंगे। भारत ने संयुक्त मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर

0: फ्रीजर जब बहुत बढ़ा जा रहा है, बोझ केंद्रों से किया गया। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखिए, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे।

रोजगार संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से

को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 के

फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माइग्रो इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल नंदीबाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को

1980 başlıyor bedeni. 8 yıl önemli olan nişan dozasyon paris ke tahat stapit vishesh parishne ka dara kya parishne me sikil sel rog ke rog kaan nidan aur upchar se sambandhit vibhinn pehlon ko parashit kiya gaya. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के दो दिन के दौरे पर रहेंगे. वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे. वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा

0: और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
1: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन

0: सिंह के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहीरा तथा हो जहीरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीने में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि एन

0: कार्यक्रम एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाले नेट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कालिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले निजी सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाघाट परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अमित मासिंग ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
2: अपोजिशन मेंबर्स मैटर के वर्मा,
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।

0: विधायक नहीं माना जा सकता। इस पर कोई जवाबदेही न हो तो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले छह दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रस्तुत छे केन्द्र शासित प्रदेश देव नो समाचार पत्र जेना लेखिका छे भारती रावल। देवमां पवित्र पुरुषोत्तम मास ने लईने विविध धार्मिक कार्यक्रमों आयोजित करवामां आव्या हता। देवमां रहेवासी शास्त्री विक्रम वाटंडियाए श्रीमद भागवत सप्ताहनुं आयोजन देवना गोगला खाते कर्युं हतुं। आ दरमियान पूजा अर्चना आरती तथा नवाप्रसाद वगैरेनो भव्य भक्तो लाभ लई धन्यता अनुभवी हती। पुरुषोत्तम मास ने लई दीव जिल्लामां विविध स्थळोए तथा मंदिरोमां भक्तो द्वारा विशेष धार्मिक कार्यक्रमों आयोजित करवामां आव्या हता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यकाल में 12 वर्ष पूर्ण थता देव भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेक कार्यक्रमों आयोजित करवामां आव्या हता। प्रधानमंत्री नेतृत्व में 12 वर्ष विश्वास विकास जनकल्याण के अंतर्गत वृक्षारोपण तथा देव जिले में अनेक मंदिरों में महाआरती आयोजन करवामां आव्या हता। आ कार्यक्रमों में बीजेपी होद्देदारों कार्यकर्ताओं चूंटायेला जनप्रतिनिधियों वगैरह उपस्थित रहा था। देव खाते उनाळु वेकेशन दरमियान प्रवासियों ने भारी भीड़ जोवा मळी हती। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण उनाळु वेकेशन दरमियान मोटी संख्या में प्रवासियों उमटा हता अने देव सेंट पॉल चर्च गोगला ब्लू फ्लेग बीच नागरा बीच फॉरेन मार्केट देव किल्लो तलंगोर बीच वगैरह स्थलों पर फरवानी मजा मळी हती। देव खाते आवेल प्रवासियों नुं खास आकर्षण नागरा बीच रह्युं हतुं। देव में 1 जून थी दरिया में नहेवा पर प्रतिबंध मुकवामां आव्यो छे जेने लईने प्रवासियों में निराशा जोवा मळी हती। 1 जून थी 31 ऑगस्ट सुधी देव कलेक्टर आदेश मुजब देवना दरिया में नहेवा तथा मच्छीमारी पर प्रतिबंध लगाड़वामां आव्यो छे। चौमासा ने लई लोकोनी सुरक्षा ने ध्यान में राखी आदेश जारी करवामां आव्यो छे। आदेश में अनेक प्रवासियों सरिया प्रलंबन करता जोवा मळ्या हता। राहुल देव बुराना आदेश बाद बीच पर देव पोलीस पण तैनात करवामां आवी हती। देवनी शालाओं में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित करवामां आव्यो हतो। देव प्रशासन द्वारा सरकारी तथा खानगी स्कूलों में नवा शैक्षणिक सत्र की शुरूआत थता नाना भूलकाओं प्रथम दिवसे शाला प्रवेश ने लई भव्य कार्यक्रम आयोजित थयो। बाळकोने धामधूम थी अने उत्साहपूर्वक शाला में ऑफिसरो तथा चूंटायेला जनप्रतिनिधियों हस्ते तिलक लगाड़ी फळोनी किट तथा शैक्षणिक किट वितरण करवामां आवी हती। देव खाते फिट इंडिया ग्रुप द्वारा विश्व साइकिल दिवस की उजवणी करवामां आवी। विश्व साइकिल दिवस दरमियान फिट इंडिया ग्रुप की टीम द्वारा देवना गंगेश्वर महादेव मंदिर सुधी साइकिल यात्रा करी लोकोने साइकिल चलावा अने फिट रहेवानो संदेशो पाठव्यो हतो। देव प्रशासन द्वारा खेलो इंडिया अंतर्गत खेल महोत्सव 2026 नुं भव्य आयोजन करवामां आव्यु जेमां चेस स्पर्धा योगा स्विमिंग वॉलीबॉल कराटे टेबल टेनिस जेवी अनेक स्पर्धाओ योजाई हती। स्पर्धामां विजेता खेलाड़ियों ने महानुभावों नमस्ते ट्रॉफी शील्ड अने प्रमाणपत्र आदि प्रोत्साहित करवामां आव्या हता। देव आरोग्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेठ देवना अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप योजाये। 100% एबीडीएम सक्षम डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड हासिल कर देश प्रथम एवं जिला तरीके ऐतिहासिक सिद्धि प्राप्त करी है जेने डिजिटल हेल्थ सेवाओं क्षेत्र में एक नव सीमाचिन्ह स्थापित कर आ सिद्धि ने कारण देव ने डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन अग्रणी केन्द्र तरीके ओळख मिली रही छे। देव पोलिस टीम द्वारा सराहनीय कामगिरी करवामां आवी। देव पोलिस वडा द्वारा पोलिस साइबर सेल तथा पोलिस स्पेशल स्टाफ द्वारा देवना स्थानिक तथा पर्यटकों खोवायेला अने चोरायेला 40 जेटला मोबाइल फोन तेमना मूळ मालिक ने परत करवामां आव्या हता। आ प्रसंगे प्रवासी अने स्थानिको में खुशीनो माहोल जोवा मळ्यो अने देव एसपी तथा तेमनी तमाम टीम ने तेओए आभार व्यक्त कर्यो हतो। देवना ग्रामीण तथा शहरी विस्तार में 2 दिवसीय प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित करवामां आव्यो हतो। प्रथम दिवसे देवना महाराणा प्रताप ग्राम पंचायत सामे अने बीजा दिवसे देवना गोगला खाते कार्यक्रम नुं आयोजन थयुं हतुं। कार्यक्रम दरमियान मामलतदार ऑफिस अर्बन सर्वे ऑफिस आरोग्य विभाग टोरेंट पावर लिमिटेड परिवहन विभाग अने देवनी लेड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेवी सरकारी कचेरीओ तेमनी सेवा आपी हती। आप सामी रहे हता केन्द्र शासित प्रदेश देवो समाचार पत्र जेना लेखिका हता भारती रावल। आ वसारा आकाशवाणीना अमदावाद वडोदरा केन्द्र पर करवामां आव्यो।

के बाद हम यम जम की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की हम कहीं विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ इस समय इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखिए रविवार 28 जून सुबह

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इसलिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखिए, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: અમારી સાંજના 5 થવા આવ્યા છે. અમારી બીજી સભાનું પ્રસારણ શરૂ થાય છે. આરંભ સભા શો દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીના સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં પ્રશાંત કુમાર. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है. फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया. उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए. स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे. श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है. युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा. उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है. राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी. राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है. उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है.
2: एक

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंदाजरे स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माण परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिया मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया के किम मिन सिंह को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Yozgar Yojana in New Delhi today. The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said that since August last year, more than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under the scheme, of whom nearly 30% are women. The BJP today said that India's participation at the G7 highlights that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is steadily gaining the trust of the world's major countries with efficiency and competence. Addressing the media in New Delhi, BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said, despite not being a full member, India was invited at the forum and was seen taking the lead. He noted that during the summit, Mr. Modi proposed the International Mobilization Partnership for accelerating connectivity and trade, on which all countries expressed interest. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target, year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The president was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today. President Murmu appealed all state governments and officials not to take the disease lightly because it is passed on from generation to another. She said efforts should be made to eradicate it completely because treatment is possible.

0: And I just want to tell you the motto for this is Rozgar Ya Karobar, Saath Hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advanced claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology FAT through forgetting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डांस पर आने के बाद जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं। और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो। और शुरुआत से अब तक का सफर देखे तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजित हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक झलक होती
0: है। Rozgar Ya Karobar,

0: को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है। आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है।
1: Reasonable.

0: सभी प्रकार के कार्यों में व्यवस्था की अनुमति, विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं।
1: Exactly.

the doctor can increase, and it can be seen to wear on the desk.

first idea in the world, India has got recognition as

0: पारदर्शी कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना
1: and they did get

Come to the floor.

0: आनंद मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र है, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
1: हमने बुके ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर विल बी सिटिंग राइट इन द मिडिल, ऑन द राइट विल बी फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर, ऑन द लेफ्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द बोर्ड बिहाइंड यू नो सो ब्यूटीफुल वन देयर अ स्क्रीन ऑन द एट द ऑन द पैनल वन इन द डायस जस्ट बिहाइंड द डायस इज अ ब्यूटीफुल बोर्ड एंड ऑन दैट द प्राइम मिनिस्टर द रोजगार योजना एवरीथिंग इज गिवन ऑल द डिटेल्स आर गिवन ऑन दैट।
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए।
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's been 12 years of his role as the Prime Minister of our country, and all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum, so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through, and because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they are financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in, and people are getting ready, all moving towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है, जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना है एक प्राउड मोमेंट होता है। नहीं
1: through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that, don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something, you've got a future. Every person has a plan. A talent, God has given a talent to you. And he will see that you come up in your life. So he said that low marks will not, it's not an end to anything. That's how he encourages. And the students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they are coming with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपके जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही, इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं। ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उससे जुड़ जाते हैं और आज के युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से।
1: Yes, and one more thing. You know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner. You know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable. But even young, the old people, whom he talks to, he talks with so much of freedom that it makes them feel very comfortable. and during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and he mingles with them. What a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take your, listens to your problems. That is the greatest thing about Prime Minister, he listens to your problems and he tries to solve them.
0: जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है
1: yes.
0: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी
1: yeah. And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India? Right? Implementation was already started. 15 lakh have already got it. Today they will be confirmed for them through the press of the written by the Prime Minister. And then, over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They will get a job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment have always carried out these Rozgar Melas, you know, in the past. So through that, they generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some might get very meager amount, some get a good job. But it helps them. At least they don't starve. They get a few meals a day. They're able to earn enough to get 2 meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
0: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रो तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती है तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया नहीं। तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार।
1: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are different dumb people also over here, and there's one person is translating through action. It's very interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and his

0: I mean, the words, you know, the words thing is translated into his actions, you know. And really interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on the mobile. In fact, most of them have got it. But still, if you can confirm that to the Prime Minister, presses the button, the magic button today.
1: Mm. Yeah. Well, first of all, it has to be
0: yes.
1: The remote का button press होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी। बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं। और ये वाला लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसा लगता है कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलते रहे, बातचीत खत्म ना हो।
0: I think everything is stopped. They are all in attention. I think the Prime Minister is arriving with other dignitaries. He'll be taking a seat on the dais. And once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet. But one of the beneficiaries, that will be a privilege for the beneficiary, like the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister has entered. And he's entered and he's walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाइयों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का।
0: The Prime Minister is arrived. He's taken his seat on the dais. Flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामणि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
0: And now the welcome of Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: Pradhan Mantri, Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat Prosahan Rashi vitaran karne ke avsar par hamare beech mein upasthit Adaniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाई एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है।

0: नया भारत के निर्माण में आपके विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए चार महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा और बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा एम्प्लॉयमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में पेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था। 40 साल से अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। एक क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब आप विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं के हाथ में काम दिया है। और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्क फोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही है आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का एक पैकेज, 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसके रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कुछ पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
1: आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
0: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी

0: आरबीआई कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रूपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को यह राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
1: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर मिले।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मुझे लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया।

0: योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
1: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that is a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. There is a remote control button, and the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting the appointment letters, and they'll be getting the money. I haven't

0: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
1: कृपया
0: अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
0: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मंडला जी, मैं शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा भी मन के संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं देख रहा हूं यहीं पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही

कौन सा उस मिलीटर की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भारी भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है कि इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है। इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरा नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता है छोटा ही रहना अच्छा है। और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने आप कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास
सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से

पिछले के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। अरे मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल,

लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, नेशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही है और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसे पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उन्होंने से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे। बोल रहा था हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे।

0: आपसे विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जिन्हें मैं देख रहा था, वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधा सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल्ड टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है, पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, पर दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती है, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी सेवाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती है। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं। क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वो टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी, दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। और दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और दिन के चोट पर दिखाएगा। और यही यही विकसित भारत की शक्ति है और यही मेरे नौजवान साथियों के मेरे युवाओं की उनके सामर्थ्य की युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, वो हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: Full
1: stress on the youth of the country. He says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he is putting so much of stress on the youth. And he said that their dream is what my

अक्टूबर ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है ऐसा उन्होंने कहा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि आप सबसे देखिए उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।

0: Affairs Program Executive, V.K. Tomar, Engineering Staff, Ashok Kumar Mishra, Babulal Meena और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रियो।

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोची जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों
1: को पढ़ने की राशि आज काम करेंगे।

0: गांधी जी, बहुआयामी व्यक्तित्व, जीवन में चीवट, सत्य में आग्रह, ईश्वर प्रति में अपार श्रद्धा, छेवाड़ा में मानवीय विचार, दरेक पासाओ स्वाभाविक अने तेमने जानवर के जानवर प्रयत्न करना सौने प्रभावित करे।
1: घना संजोगों की परिस्थिति में आपने गांधी जी नो प्रभावशाली आज गांधी जी हो तो भूले आज गांधी जी आपके लक्ष्य न हो निखर देह नहीं आपके लक्ष्य पर तेमना विचारो अने तेमने पोता आचार थी आपना जो आदर्श है तेना द्वारा ये अपनी साथ है।
0: अने दोस्तों आ आदर्शो ज गांधी जी ने आपने वच्चे राख्या छे। गांधी विचार अने गांधी जी दरेक समय में प्रस्तुत छे तेने एक प्रतिति पण करावे छे।
1: आज आपने एक एवं व्यक्ति ने मळवा छे तेमनी जीवन सफर ने जाणवी छे जिमने गांधी जी ने जीवन राख्या छे तेमनु सर्जन गांधी जी तेमना सृजन होवानी साबिती आपे छे। आज आपनी साथे छे जयेश भाई हिंगराजिया। गांधी जी ने जन्मभूमि पोरबंदर ना वतनी एवं जयेश भाई गांधी जी ने पोताना कर्मों द्वारा सर्जन द्वारा जीवंत राख्या छे। गांधी जी ने विशिष्ट रीते जीवंत राख्या

ચેનલ મળે.

એ પછી ધીમે ધીમે 10

समझना कि चोरी में सजा कारावास में सजा आती है, कि समझदार में बच्चे जेल

Bueno,

تصویر

yapın, yeterli tatlı olmalı.

0: आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन

0: पूछा गया है। भावनगर में रेगिंग में फरियाद मामले दोषी कक्षा विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में थे तत्काल बर्तरफ। अंदाजे 62,570 मीट्रिक टन एलएनजी भरे लू मालवाहक जहाज दिशा भरूच में जहाज बंदर पहुंचे। राज्यभर में 6 वर्ष में 1.5 लाख योग ट्रेनर तैयार कराया। दक्षिण और उत्तर गुजरात में आवतीकाल 25 जून सुधी सामान्य वर्षा भी आ रही है। समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहा, भारत में युवाओं आने वाले वर्षो में विश्व में विकास नवीनता और उद्योग साहसिकता का नेतृत्व करेंगे। विकसित भारत नो रस्तो युवाओं ने स्वप्न तेना कौशल्य सामर्थ्य थी पसार थानी चाहिए। तेमणे कहा, समग्र विश्व आज भारत ने युवा शक्ति ने चर्चा कर रही है। नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपया ने प्रोत्साहन रकम वितरण कर सभा ने संबोधता श्री मोदी आ बात कही। तेमणे आ योजना ने युवा और उद्योग वच्चे एक मजबूत सेतु बनाने योजना बनाई।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: आयोजना के राज्य सहित देशभर में 15 लाख रोजगार नेटक सर्जन थे। केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहूं, ऑगस्ट 2025 से शुरू हुए आयोजना अंतर्गत 63 लाख की वो कर्मचारियों औपचारिक कार्यभर में शामिल कराया है। तेरा अंदाजे 30% महिलाओं से। केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव कहूं, गत 12 वर्ष में देश विश्वास विकास और जन कल्याण पर आधारित फैशन मॉडल तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सफर कार्यक्रम में उजाणी निमित्त गांधीनगर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संबोधित श्री यादव कहूं, सरकार ने आ सिद्धि हुए वर्ष 2047 सुधी में विकसित भारत तरफ ने सफर मे मजबूत पायो नाख्यो छे।
2: प्रधानमंत्री के रूप में एक लंबे काल देश के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में जो सेवा करनी है उसमें राष्ट्रप्रथम के भाव को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण के संकल्पों को मजबूत करना, ग्रामीण विकास को बल देना और रोजगार का सृजन करना, इस पर उन्होंने पूरे देश का मार्गदर्शन किया। एक विकसित भारत बनाने के संकल्प में आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है।
0: आ प्रसंगे नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघे कहूं, भारत हवे विश्व नो चौथो सौथी मोटो अर्थतंत्र तरीके उभरी आव्यो छे अने वैश्विक आर्थिक मंदी वच्चे पण भारते स्थितिस्थापक वृद्धि दर जाळवी रह्यो छे। राष्ट्रीय स्वनिर्भरता नो उल्लेख करता श्री संघे कहूं, भारत एक आयात करनाथी संरक्षण शस्त्रोना मुख्य निकासकार बन्यो छे, जेमणे माळखाकीय सुविधाओना विकासनी अभूतपूर्व प्रगति पर पण प्रकाश पाड्यो हतो। त्यारबाद श्री यादवे गांधीनगरमां

Finanzrechtsmodelle

0: आज की हवा में कार्यक्रम में निजी संगठन के पुरातत्व के तत्व, लेखिका है नाजदीन और निर्देशक है चंद्र प्रभा मतनागर का।
1: दुकान पे लगा दी मैंने तो जा रहा हूँ डेकोरेशन पीसेज यानी सजावट के टुकड़े, ये चीजें ड्राइंग वगैरह में सजाने के काम
2: मुझे मैंने 24 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, 24 साल लोग
1: ये पुराने जमाने की नई चीज है।
2: साल अच्छा नई सही है, मगर कौन रखेगा अपने ड्राइंग रूम में?
1: अरे अमीन दूसरों पर मारने के लिए ये लोग इन्हें अपने घर में रखते हैं ताकि सोसाइटी की नाक ऊंची
2: रहे।
1: इस घर को देखिए, देखो
2: ना
1: जी है, देखने में मामूली है मगर हजारों साल पुराना
2: है।
1: मोहन जोड़ो और हापा की पढ़ाई से लगा और इस संदूक को पहचानते हैं को बिगाड़ना पुर्तगाल से अपने साथ
2: माया बहुत बिगड़ानी छा चुके हैं। ये गंदा देखा, गंदा देखा है, चंगे खाते चंगे खाते जिसको उसने बड़े बड़े को सीधा कर दिया है। मैं तुम दोनों को सीधा बता
1: देना ये वाकई ऐसा कीजिए मुंशी जी, ये बंदा हम लोगों को
2: ये कुछ लोगों में चलने के लिए बनाया।

आज के इस शहर में कोई नहीं

اپنے لہو بہایا

0: Gentlemen,
1: مشهور في مصر سقراط

पुत्री पत्र अभी आप सुन रहे थे नाजरीन की लिखी ये झलकी, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का था। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: में श्री शमी के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर को लिखा ये दो गाना सुना। सुर उदित नारायण और आका याग्निक की थी। फिल्म का नाम था तेरे नाम।
1: नसीम तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा, मना प्यारा शरीफ, तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीम ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना वासु, और फारूक ने कहा बेटा बस राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हारा क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मेल है, आप नहीं करते रहोगे।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुभाष शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मगर मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला, तो इन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को निभाएंगे, इसके सेकंड लाइन में लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम।
0: बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुधाकर शर्मा का लिखा गीत अभी आपने हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुना। सूर्य कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के थे। फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। चित्रों कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

नगर भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथी फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और पास बनाई है जतिन ललित ने।

0: स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारी कम हो जाएगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव।

0: हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर मेहती, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोर अवस्था से मैं कहीं कहीं अपने भाषा में गंध का प्रयोग करता था, हासनी में गंदा था और मैं बहुत गलत किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे घर में निकलता था किसी मुद्दे पर, वो तो सभी ने कहा कि आपकी बात से नहीं बोल लेते हैं, ये मेरी मजे की बात है कि बाद में चल करके वह मेरी प्रमुख बना होगी।
1: आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

एकात्मिक और साथियों की आवाजों में अध्यात्मिक फिल्म रिफ्यू जी का एक गीत सुना, जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। इस गाने के साथ ही आज का चित्रों कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं।

0: 네, 프리안카 아로라. मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादी को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसके संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 36,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रूपए से

0: केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण की प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: यदि भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकेबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12

0: से क्योंकि रिपोर्ट के साथ अक्षित प्रदान आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए पार्ट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afpat.abcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
3: दिस इज द कंट्री।
4: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डंडी हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टाइन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब इसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पुरुष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया के किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसके संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शुभम चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon, Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chali had to face Park Leon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
3: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का वास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ कहना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
5: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
3: प्रधान मंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
5: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the 4 important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Gold Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Center and a mega health camp at the sub-divisional hospital in Rairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. She also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi block, the Brahma Kumari's Mata Shakti Bhavan, a special circuit house, and the newly operational Rairangpur Police District. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Tendulkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is a primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the Apex Court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The Apex Court called for a regulatory body to effectuate the fundamental right to walk on demarcated footpaths. It said such regulator will maintain institutional integrity while taking independent and objective decisions without governmental or industrial control. The declaration by the top court came in an unfortunate motor accident compensation case where a father lost his 5-year-old son while taking him to school. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIN News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has slammed Pakistan at the United Nations as it accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that got shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
6: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist escape policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
5: Mr. Singh said India categorically rejects the baseless and malicious allegations made by Pakistan. She said Jammu and Kashmir was, is and will always remain integral and inalienable part of India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that passport delivery has now become completely democratized as it is swift, secured and decentralized. Addressing the annual Regional Passport Officers Conference in New Delhi, Dr. Jaishankar said that the passport service is accessible to the remotest corner of the nation. He said Indian passport is treated with respect and with confidence internationally.
7: As our foreign policy establishes India as a Vishwa Bandhu, the Indian passport is treated with respect and with confidence internationally. Our responsibility is to ensure that the process of obtaining this document remains a matter of right, not as a struggle.
5: Peace talks between the US and Iran were called off today after intense fighting between Israel and Hezbollah in southern Lebanon, killing 21 people. Iranian officials did not travel as planned to Switzerland, insisting that the fighting in Lebanon must stop before the talks can take place. U.S. Vice President J.D. Vance also postponed his trip. Israel and Hezbollah later agreed to a ceasefire. A senior U.S. official said negotiators for the U.S. and Qatar worked out the deal with the help from Iran. A report from our correspondent.

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने खाक किया।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पर कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृग्या के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आई और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

0: कामयाबी में उनकी फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना। और ये फिल्म भी
1: आ जानू मैं सजनिया आ जानू

80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों, डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट

दोस्तों, इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों, सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर, यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्या मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: यू आर इन लव।
2: वी आर इन लव।
0: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म तहादेर कोठा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म दलाल

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

संगीत के सुनने वालों को राजुल का नमस्कार। ये रात की चादर में छिपी आसमान से छरती हुई चांदनी का लहजा, ये रुक रुक कर चलती हवाओं के झोंकों की महक, चाहतों के मेड़ में कुछ बुने कुछ अधबुने से ख्वाब, पर उनमें कुछ लरसते जज्बातों की मीठी सी चहक, कहती है वो दिल की जुबान जिस पर कुर्बान है ये सारा जहां।

होने से वीराने भी गुलजार हो जाते हैं। दिल में महक उठते हैं कितने अरमा, और खुशबू आंखों में उतर आती है। बातों के सिलसिले में अक्सर वो एक नाम बार बार आता है।

ज्यादा धड़कनों में सुनाई देता है। एक इल्तिजा बांधी है सांसों की दूर से, तुम्हारी खुशबू आती है हवाओं में, तुम्हारा नाम गूंजता है।

क्या हर रोज सजाती है एक नया ख्वाब, और इन आंखों ने किया है सिर्फ उस रात का इंतजार, जिसके ख्वाबों में हो बस तेरा ख्याल, धीरे से बयां हो जाए वो शबनमी एहसास। आज तो वही मन्नतों की रात आई है, संग उन्हें कदमों की आहट लाई है।

मोहब्बत वो बाग जिसका जिसके कदमों में छुप जाता है आसमां, यही है वो सबसे अजीम लफ्ज जिसमें सातों समंदर और ये पूरी दुनिया समा जाती है। अगर सिमट जाए तो एक नन्हा सा दिल काफी है जिसकी हर धड़कन पर लिखा हो तो सिर्फ

छाया गीत में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब कीजिए इजाजत, नमस्कार।

जाने इन किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इन कौन है मेरे लिए। जवानी आई मस्त मस्त दिन पूरे जलाते चल रही है राह में दियो, न जाने इन किस

0: पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर रेड्डी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में दिल का प्रयोग करता था, हास भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विरोध किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा भी बोल लेते हैं, ये मेरे मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी बहुत बुरा हो गई।
0: सुना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे

0: मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: बंगाली के गुनगुनार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रही है। वो जो घुटन है उस घुटन को बरवाड़ी के गंभीर में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने उस पर मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45

0: आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हुई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कुशन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कुशन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कुशन ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, IIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हूज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. And this dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability, and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
1: प्रधान मंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
2: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Center and Mega Health Camp at the Sub-Divisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the Apex Court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19, 1D and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it is accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday, after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
3: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist escape policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
2: In badminton, India's Ashmita Chilli has stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी है। 12वें साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक

0: सिर्फ राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमें भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जो 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिमान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश है और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश है, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पूरा काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेशी नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: वैश्विक साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां रही है?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट है या हित है, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिला, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन यह रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया। और वही एक इश्यू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा, और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में इसको भी सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत

0: वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रपितों की भावना के साथ लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती है जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे भारत को हासिल है उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं अपने अध्यक्ष साहब का, सबसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी अलाइनमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में उसका काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च 2024 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लगाए और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओवादी अपने जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसकी वजह से माओवादी का बिल्कुल खात्मा हो गया। और यहाँ इनके नेता भी जो थे वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओवादी तकरीबन खत्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये निशर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सरेंडर फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और

इसमें करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बियन लोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोरोस

और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है और इन डेवलपमेंट्स की वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने

0: कई जगहों में और जिनकी वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा ये भी समझ रहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से

0: अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है और उस वजह से जो युवक है उन लोगों को नौकरियां मिल रही है। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहा है। 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल अभिनंदन प्रोफेसर जोशी का। मैम आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैट्रिक की पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट EU ने साइन किया है। अब इस FTA के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम

से देशों के साथ, उसमें इजाफा तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआई में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें भी हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ ही अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ, जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमका हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक

0: क्षेत्र में उग्रह है जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होमग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे और भारत से उन्होंने हमारे जो होमग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं जो दूसरे इक्विपमेंट है वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे तो उस समय के ब्राजील के ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया है और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो कि हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लमोवा, हांगकांग कासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के वो बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो और तो I2U2 की हम बात करें तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बनकर के आए और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी का टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलैटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा। यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम

सरकार अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से

0: ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और तीन बड़े ऑपरेशन हुए थे उड़ी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये तीन जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशन ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहाँ पर जो

तुरंत उसका जवाब दिया, ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके की हरकत अगर आप करेंगे तो हमारी कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद आप सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एक टॉप ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसकी वजह से उन्हें काफी ढील पना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूँ, बड़े दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट

0: तक वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSP की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में, आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे

0: चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
1: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की,

0: सिस्टम की वजह से हम लोग उनको रोकते हैं और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें और वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं। मैंने लगातार अलग अलग एफटीएस का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे एआई, हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो एआई समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई

साधन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिमान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे

रखा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए।

लगातार तनाव बना रहता है। इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंपैक्ट है, और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27

0: अपने जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40 से 60 70 प्रतिशत तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक है, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को भी हमने प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्पलिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: इसका मैं आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रप्रथम की नीति रही है भारत की और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों में बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके

0: में हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एम के नथेनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा एक नजर आती काले प्रसारित होने कार्यक्रम पर सवेरे 6:05 भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना 6:30 अमृतारा विषय नाद ब्रह्मा वक्ता द्वारकेश लालजी महाराज 6:35 श्री रामचरित नमस्कार 6:45 फिल्म संगीत कार्यक्रम सूर सरिता 7:00 गीतों 7:20 गुजराती गीतों 8:30 सदाबहार गीतों 9:00 माहिती आणि मनोरंजन कार्यक्रम सवारे सवारे 9:30 गुजराती गीतों फिल्म संगीत 10:30 10:30 हिंदी फिल्म गीतों बराबर 10:45 सुगम संगीत कलाकार राघव दवे फिल्म संगीत कार्यक्रम 11:30 11:30 गैर फिल्मी हिंदी गीतों बपोरे 12:20 योग दिवस में विशेष कार्यक्रम विशेषज्ञ हरीश बारकेंदु शुक्ला 12:30 महिलाओं वाटर कार्यक्रम सहियर 1:10 सुगम संकेत कार्यक्रम कलाकार रसिकलाल भूषक सोनिक सुधार 1:30 फौजी दोस्तों वाटर कार्यक्रम जय भारती गुजराती की तो 12:40 3:45 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि में 23वां हप्ता वितरण करशे आ कार्यक्रम दिल्ली केन्द्र थी रिले करीशु तमारी सांजनी सभा में 5:10 फिल्म संगीत कार्यक्रम गुलमोहर 5:45 लोक संगीत कलाकार दिनेश वगासिया अने नटवरलाल तेरवड़ा 6:30 युवा दोस्तों वाले कार्यक्रम युवाणी 7:00 गैर फिल्म गीतों 7:22 खेडूत मित्र वाले कार्यक्रम गामनो चोरो रात्रि 8:00 फिल्म संगीत कार्यक्रम सूर माधुरी 8:30 गुजराती गीतों 9:30 विविध भारती मुंबई केंद्र पर थी सह प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार 10:00 संगीत में अखिल भारतीय कार्यक्रम अंतर्गत विवेक कर्मा द्वारा ठुमरी तथा गाजरा 11:10 समाचार विभाग द्वारा प्रस्तुत करना विशेष श्रेणी विषय संस्कृति कार्यक्रम में विविध बाद हमेशा बढ़िया हवामान समाचार अहमदाबाद शहर में महत्तम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस नोधायु जे सामान्य करता 2 डिग्री सेल्सियस वधु रह्यु जे लघुत्तम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस नोधायु जे सामान्य करता 0.6 डिग्री सेल्सियस ओछु रह्यु सांजे 5:30 वातावरण में भेजनु प्रमाण 37 टका नोधायु आगाही छे के आकाश मुख्यत्वे वादळ छायु रहेशे तेमज वीजळीना कड़ाका साथे एकाद बे झापटा पड़वानी संभावना छे महत्तम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस नी आसपास रहेवानी संभावना छे तो आज का हवामान समाचार 356.86 मीटर अर्थात 846 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी में अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र से अत्यार रात्रि 11:49 थवा जा रही है अमारी बीजी सभा अही समाप्त करिए छे प्रथम सभा में आती काले सवेरे 5:50 आज मिनट पर आपने फरी मिलीशू त्यां सुधी रजा आपशो परंतु आप डीटीएच के माध्यम द्वारा गुजराती प्रसारण सेवा सांभळी शको छो नमस्कार शुभरात्रि जय हिंद।